बातें, ये जहाँ होते हैं एक्सीडेंट। ये जहाँ होते हैं एक्सीडेंट हो ही जाते हैं।